0: आज प्रोग्राम का आगाज हमने माँ की दुआओं से किया और ऐसी एक माँ है हमारी फातिमा एडम्स जो बहुत अभी परेशान है क्योंकि उनके बेटे अयूब आजकल बहुत बीमार है. तो दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिल अता दे. और आज फातिमा पा की सालगिरह भी है. फातिमा पा बहुत बहुत बधाई हो आपको और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हिम्मत दे, ताकत दे कि आप इस मुश्किल वक्त अल्लाह आपके साथ रहे इंशाल्लाह. हमारा अगला कमाम है खामोश दुआ.
1: जवान सूख जाते हैं और लफ्ज खत्म हो जाते हैं.

बेशक खूबसूरत कलाम और मैसेज आए हैं असलम साहब और रुखशाना आपा की तरफ से, जो हर हफ्ते मुझे बिना कोई डिले वजह से मैसेज भेजते हैं. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स, स्पेशल ग्रीटिंग्स टू खैरुन सा चोगली एंड ऑल हुजाज enjoying Safiya's beautiful selections. Alhamdulillah. Eid Mubarak to all the ummat of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Love and duas from Rukshana Aslam. Not forgetting Safiya, all listeners and all technical staff. Ameen to all Safiya's beautiful duas. Jazakallah khair. Aur Shamshu Appa bhi likh rahi hai. Unhone bhi bheja hai. Assalamu alaikum Safiya. Ki ye main baad mein padhungi. अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी बादशाही उसी के लिए है, तमाम तारीफ है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है. या अल्लाह, जो लोग हज की तमन्ना रखते हैं उन्हें अपने घर काबा की हाज़िरी नसीब फरमा, जो हज कर रहे हैं उनका हज मकबूल फरमा और हमें भी बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा. इसी दुआ के साथ हमारा अगला कलाम, ए हाजियो दुआ में याद रखना.

मैजिक। बेशक हाजी, अब मीना जाने की तैयारी कर रहे होंगे। कल ज़िलहज की 8 तारीख है सऊदीया में और हमारी 6, तो कल हमारे हाजी भाई बहन सब मीना में जाने की तैयारी करेंगे और मीना पहुंचेंगे इंशाल्लाह। मैसेज आया है शमशु आपा की तरफ से जो कहती है, अस्सलाम वालेकुम सफिया, आई सेंड दिस बर्थडे मैसेज दिस मॉर्निंग बट माई सन डिड नॉट हियर, काइंडली प्लीज रीड आउट। ओके, दिस बर्थडे मैसेज इज फॉर परवेज इदरूस, हु इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुमारो। हैप्पी बर्थडे, मे अल्लाह ग्रांट यू मेनी मोर फिल्ड विद गुड हेल्थ, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, सक्सेस, लव एंड ऑल थिंग्स ऑफ गुडनेस। मे ही ग्रांट आफिया इन ऑल दैट यू डू इंशाल्लाह। विशिंग यू एन अमेजिंग डे एंड योर हेड इंशाल्लाह। Mom Shamshunisa, wife Rabia, son Muhammad Zakaria and daughter Umaira and the crazy family. Jazakallah khair. Bahut bahut shukriya. And aage Shamshu Appa keh rahi, she's enjoying the selection and she would love to speak Urdu inshallah. Zarur kyun nahi, aap bhi zarur sikhenge Urdu. Bahut hi khoobsurat zuban hai. Kuch log kehte hain ye gulabi Urdu hai. To inshallah Allah Taala aapko bhi himmat de aur aap ye zuban seekhe kyunki ye bahut hi khoobsurat zuban hai. आगे हज की तैयारियां हो रही है। कल ज़िलहज की 8 तारीख है सऊदीया में और आज हमारी 6 तारीख है। ऐ अल्लाह, इस घर की इज्जत अजमत शान और हुर्मत में और इजाफा फरमा और हम तुझसे नफ़ा देने वाला इल्म वासी रिस्क और हर बीमारी की शिफा मांगते हैं या रब्बुल आलमीन। इस दुआ को कबूल कर, क्योंकि काफ़ी लोग बीमार हैं, काफ़ी लोग बीमारी से मुब्तला है और परेशान है, तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में यही दुआ है या रब इनकी बीमारियों को शिफा में बदल दे और इनकी परेशानियों को दूर कर। तो अगला कलाम मक्का का हरम की फजाएं।

बेशक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत कलाम. और मैसेज आया मेरी प्यारी दोस्त शाहिदा पाक की तरफ से, जो कहती है, आई जस्ट वॉन्ट टू से आई लव दैट मोथ सॉन्ग. एवरी टाइम इट प्लेज इट टचेज माई हार्ट इन अ वे आई कॉन्ट एक्सप्लेन. थैंक यू फॉर शेयरिंग इट एंड फॉर द लाइट यू ब्रिंग थ्रू योर वर्क. मे अल्लाह सुबहान तआला ब्लेस यू, प्रोटेक्ट यू एंड रिवॉर्ड यू फॉर ऑल द गुडनेस यू स्प्रेड. माशाल्लाह सिस्टर, यू आर ट्रूली अप्रिशिएटेड. और वो बहुत सारा प्यार और दुआएं भेज रही है. और वैसे ही हमारी प्यारी दोस्त रियाना रोइका वो भी, और हमारी शमशु आपा भी वो प्रोग्राम बहुत पसंद कर रही है. बॉबी भाई की तरफ से मैसेज आया बहुत दिनों के बाद. बॉबी भाई आप कैसे हैं? बॉबी भाई वो कह रहे हैं कि सलामुअलैकुम, सालगिरह मुबारक. जो अगले हफ्ते होगी हमारे प्यारी पुप्पी हाफिज़ा पाक उर्फ आंटी बाम्बा, अल्लाह अपने फजल करम से और नबी के सदक़े में उनको दोनों जहाँ की खुशियाँ सेहत कामिल के साथ अता फरमाए और उनकी हर दिली ख्वाहिश पूरी करे, आमीन.

हज पे जाने की. वो अब कल मीना में जाएंगे और फिर उसके बाद मंगल को अरफात में होंगे. पाक है वो अल्लाह जिसने इस सवारी को हमारे काबू में दिया और हम इस पर काबू नहीं कर पा सकते और हमने अपने रब की तरफ ही लौट कर जाना है. हाजिर है हम अल्लाह, हाजिर है हम, तेरा कोई शरीक नहीं, हाजिर है हम. बेशक तमाम तारीफ और नियामतें तेरे ही लिए है और बादशाही भी तेरे लिए है, तेरे कोई शरीक नहीं. तो अगला कलाम अरफात के आंसू और मुजदलफा की रात.

जी बेशक, ये आज है 6 तारीख जिलहज की और हमारे हाजी भाई बहन सऊदी में तैयारी कर रहे हैं।

जी हाँ, महीना हज का आज है 6 जिलहज, 1447, और हज की तैयारियां हो रही है। ये वाकया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इताअत और कुर्बानी की मिसाल है। उन्होंने हर हाल में अल्लाह को हुक्म को कबूल किया। एक मरतबा अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में दिखाया कि अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बानी करें। नबियों का ख्वाब सच होता है। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बात हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताई तो उन्होंने फरमाया, अब्बा जान, जो अल्लाह का हुक्म है वो किया जाए, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इतना खूबसूरत अंदाज था इन नबियों का। और हम इंसान जब थोड़ी सी मुसीबत आ जाते हैं, रो पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं। अगला कलाम मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, किया अल्लाह ने करम।

माशाल्लाह मदीना जाने वालों तुम मुझे भी साथ ले लो, और ऐसी हमारी प्यारी रशीदा अपा रशीदा दन से जो कह रही है मेरे लिए भी दुआ करना, और हम अल्लाह ताला मुझे भी किसी का मोहताज ना करे, और वो प्रोग्राम को बहुत पसंद करे। बहुत बहुत शुक्रिया रशीदा अपा आपकी दुआओं का, आपके हौसला अफजाई का। आज है 24 मई 2026, 6 जिलहज 1447, हज शुरू होने जा रहा है माशाल्लाह। 1447 का खुश नसीब है वो लोग जो पहुँचे वहाँ पे, और जो जाना चाहते हैं अल्लाह ताला आसानी करे उनके लिए, वो भी जल्द से जल्द पहुँचे। आप नियत करें और अल्लाह पे छोड़ दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपके लिए दरवाजे खोलेगा इंशाल्लाह। अगला कलाम है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, चले हाजी हज अदा करने।

जी हाँ, जो मुझे काफ़ी मैसेजेस आए, कह रहे हैं ये प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत है हज के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि हम भी वहाँ जाना चाहते, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको भी बुला ले जल्द से जल्द। अगला कलाम हाफिज मोहम्मद अकरम साहब की आवाज़ में एक बार बुला ले।

बेशक जब हाजी एहराम पहनते हैं तो ये पैगाम और ये उनको महसूस होता है कि अल्लाह के बहुत बड़ा है और उन्होंने हमेशा सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की और लोगों और शिर्क नहीं किया. अल्लाह ताला ने उनको बहुत इम्तिहानों से गुजारा लेकिन हर इम्तिहान में उन्होंने सब्र और एहतियात का सबूत दिया जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया. हमें सब्र के साथ हर मुश्किल का सामना करना है. तो अगला कलाम है मेरे मौला फिर से जो ये ख्वाहिश रखते हैं जो ये तमन्ना रखते हैं कि हम हज पे जाए ये इनके लिए है. ऐ मेरे मौला मुझे हज पे बुला.

जी हाँ, ये बहुत ही मुझे पसंद आया कलाम. और अगला कलाम जो मैंने लिया है वो एक गज़ल के तौर पे है और ये मैं डेडिकेट कर रही हूँ शरीफा पाक के लिए. इस कलाम में, ये मेरे साथ भी अक्सर होता है, हम अपने आप को भीड़ में भी होके अकेला महसूस करते हैं, ऐसे लगता है कि दुनिया में हमारा कोई नहीं. तो ये खूबसूरत कलाम, अगला कलाम है, दुनिया में भी भीड़ है.

दिया है जनाब राजू खान जी ने, इसको अपनी आवाज दी है हाजी तस्नीम आरिफ ने, और ये रिकॉर्डिंग है कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। ये पेशकश है तस्नीम आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की। तो लीजिए सामईन, बहुत हसीन वाकयात हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लीजिए मुलाहजा कीजिएगा ये वाकया 68 साल के बाद पैदा हुए बच्चे की कुर्बानी।

तो कोई सहारा ना मिला, सब अपने मिले पर तेरा जैसा ना मिला। मैं चुप रहा